का ध्यान जिम्मेदारी आए होती है कि उसके तीसरी सदी को बदलते हुए तकनीकों से बात करते हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की के लिए ममालिक के बीच टेक्नोलॉजी सब में पाकिस्तान हेरिटेज सोसाइटी की तारीफ की तो जिसे दुनिया भर के हाथों काम करने के लिए बर्बक कोशिशें की और इस शोबे के पाकिस्तानी साइंसदानों को मुताबित किया और उसकी कोशिशों से इस शोबे में प्रोसेस को आगे बढ़ा। ये सभी आपको भी पाकिस्तान के लिए रहे हैं। इस समय के डिवीजन के रूप में चुनाव चाहे भारत में आज इस्लामाबाद में डिफेंस काउंसिल के

0: वक्त कभी कभी किसी खत की तरह दिल के दरवाजे पर छोड़ जाता है कोई भूली बिसरी याद, कोई भूली सी दास्तां, लम्हा लम्हा एक पूरी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। सन 2000 तक पोलियो मुक्त विश्व का सपना साकार करने

0: वक्त कभी कभी किसी खत की तरह दिल के दरवाजे पर छोड़ जाता है कोई भूली बिसरी याद, कोई भूली सी दास्तां। लम्हा लम्हा एक पूरी तस्वीर निगाहों के सामने आ जाती है।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। सन 2000 तक पोलियो मुक्त विश्व का सपना साकार करने